तेरे अनेक पढ़ भ सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़े अवर न कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तद आपे पावे सोई वरत जी तू आपे करह सो होई तद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब स का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थी सी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जान आए है सोई जन जान हर गुण सद ही आख वखाण जन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कित न काम मिल साध संगत भज केवल नाम श्रम जाम लाग पवजल तरण कै जन्म ब्रथा जात रंग माया।

की फतह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशस का काटा सीसा श्री सकेत जगत के ईसा पहपन ब्रष्ट गगन तें पई सभिन आन बधाई दई तन तन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब नवाजा अखल पवन के सृजन।

तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ द मुहे बचाव हो। सुखी बस मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर द करिय, सब बैरण को आज संगरिय।

कृपा करे हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुर जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गंग जो याहे सुरस न पावै, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवै। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस पुण तीन कहज। भाद्रव सुधि अष्टमी रववारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चतरोपख्याने, त्रया चतरे मंत्री भूप संवादे। 405 चतर समाप्त, मस्त सब मस्त अफजू दोहरा। दास जान कर दास पर, कीजा कृपा अपार। आप हाथ द राख मोहे, मन क्रम बचन विचार चौपाई। मैं नग्न सह प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कब हूं नह त्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहें गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सत्र हमारे मरिय। देग तेग जग मैं दो चल, राख आप मोह और नंद। तुम मम करहो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान आपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करहो मोहे, हार प्रा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान द हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहर करो कविता बदनाना। कृष्ण जथा मत चित्र उचारो, चूक होए कब ले हो सुधारो, कबियो बाच दोहरा। जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कह हो जग माहे। जो तेह प्रभ को त्याय है, अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ ना।

अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए कब बाच दोहरा ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावहेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक बिस्न महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्ग बास रघुबर कर सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे विष्णु भगत की ए फल होई आद ब्याद श्वै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ विधि प्रथम सुखदावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लोह लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तर सत द्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो

तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गलां

कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जनक मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसया जन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जस दिया एह वड़ियाईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जनको से नाम हर कह लागे कह नानक।

सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाए नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोय तरस पया महरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम।

अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रत्या दरगह पाइया ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी है।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिय करनौनिद आवै ताए, सब थाई होए जी सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी श्री। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देह के अंढड कीता, तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां, चड़खड़ियां ते चढ़े तर धन आरियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छा रायत, देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय खालसे जी को बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो, समूह गुरद्वारियां गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो, हे नमाणियां दे माण नेताणियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर, शाम दे दीवानां विच बच्चियां वल्लों सोधा रहरा साहिब दे पाठ होए हन अते बच्चियां वल्लों कीर्तन सरबन कीता गया है जी, कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है जी, आप जी भोग लवाओ, अखर दा वादा घाटा पुलचुक माफ करनी जी, सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा

भक्तं प्रसिज्ये कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चर प्रचंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं प्राण सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव पेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व खोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जा कर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा फैले अनुराग नाम काम बेहीन पेखत धाम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान ताहेक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिरेक देव भेव न जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जान ही केह जेब तात्मात न जात जा कर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिरा चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जेह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो सुन्यम पावगण भंजन हार कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख अदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख भेस अंगराग नरंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन पेख सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नावही वचित मद पार छंद प्रसाद गुणगन उदार महिमा पारा सुना भंग उपमान आंगन पौप्रकाश निर्जन सा जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान कालान भूतांगा बा पंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्पह निकाम आत दुत प्रचंड मित गता खांडा लिसा कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रणाडा अनडंड बाडा चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्म अजाय न चित्र न मित्र प्रेय है पवित्र प्रतीश दिश दृश्य कृश भगवती छंद प्रसाद कथते क्या छज देसा क्या भिज पेसा क्या गंज कर्मा क्या भंज भरमा क्या भिज लोका क्या दित सोका के अवधूत बरना के विभूत करना के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है क्या शोक बरना के सर्वा भरना के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुभव रूप है के आद देव है के आप पेव है के चित्रं विहीन के कैदीन के रोजी रजाका रहीमै रिहाका के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अपुल गुनाह हैं के सहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांत हैं के राज करीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना है के सर्वत्र पावना है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काला है के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਸੋਖਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਪੋਖਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਤ੍ਰਾਣਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਪੇਸਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦਰਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦਰਾ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕੇ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰੁਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖੁਤ ਮਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਕਸਤਾ ਗਰੀਬੁਲ ਪ੍ਰਸਤਾ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨਾ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨਾ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰੁਜੂਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀ ਫੁਲ ਜੀਮੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦ ਹੈ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸੁਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ ਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭਰਗੰ ਤ੍ਰਿਭਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬਭਾਗੇ ਸੁਸੁਰਬਾਨੁਰਾਗੈ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਛਿਜ ਹੈ ਛੂਤ ਹੈ ਕੇ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਜੈ ਹੈ ਬੈ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਧੰਦ ਹੈ ਬੰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਦਿਖ ਹੈ ਦਿਖ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਢਾਹ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ ਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਤੁਰ ਛੰਦ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਯੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਦ ਬੇਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਸੁੱਤਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾ ਤਾਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾ ਪਾਤਾ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਜੈ ਹੈ ਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕੇ ਹਾਜਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀ ਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕੇ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕੇ ਸੁਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ ਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮੀਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਭੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੇ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕੇ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕੇ ਮਿੱਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ਕੇ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਮਿੱਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਕੇ ਮਿੱਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕੇ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕੇ ਮਿੱਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰਨਰ ਮੰਡਨ ਭਵਨਾਥ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਆਨ ਛੇ ਜੰਗ ਆਸੁਨਾ ਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤੋ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲਾ ਮੰਡ ਦੇਸ ਵੇਸਾ ਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹਾਨ ਦੇਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤਨ ਭਵਨਾਥ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰ ਤੁਰਾ ਸਾ ਜਾਨ ਬਾ ਹੋਏ ਕੈ ਸਦਾ
ओंकाराद कथनीनाद खल खंड ख्याल गुर बरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नामान छिजगात कर कर प्रणाम चित चरण नामान छिजगात आज जना बातन चंजगात अनरंज बात अनटंडार अनठटा पारा ढीठ धर्मत ढीठ करमान ब्रणानंत दाता महानता हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है रकाला है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वोबारण है त्रित के तरन है जग के करण है मनमान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्वनास्या है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं थपा थप हैं कृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अमृता अमृत हैं करुणा कृत हैं कृता कृत हैं तरणी त्रित हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अजबा कृत हैं अमृता अमृत हैं निर्नायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं करुणालय हैं निर्नायक हैं सर्वपायक हैं भव भंजन हैं अरगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वकृत हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्मा हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं जस पिजस हैं ओजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग साम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके पंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी कामे एक श्री छंद अजय अलह अपह अब अपू अजू अनास अकाश अगंज पंज लख पख काल दयाल अलेख अपेख नाम अकाम अगाह अटाह नाथे प्रमाथे जोनी मोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पोजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल नमे समस्तुल निवासे निरकामें बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेपूते सदा सचिदानंद सत्रं प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजाय बिगनी में हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सुन्यं पासुबं सर्वदा सर्वजुगते

सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दर अच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहा हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबत मुकाव हो, आप हाथ दर मोहे बचाव हो। सुखी बसा मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज करदा करी, सब बैरन कौ आज संगरी है। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन

कुदरत दृष्टय कुदरत शून्य कुदरत पासुक सार कुदरत पाताल आकाशे कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कृतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर्व प्यार।

लख्या रहाओ। जात में है जो चोत में जाता, अकल कलाओ पर भू रहे, तू सच्चा साहिब शिव शिवालयो, जे

0: जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए।
1: वाहेगुरु जी का खालसा
2: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: राम कली मल्ला ते जानन दी कोंकार।

साधना की सरणी पराइस जे को जन्म मन ते डराए साधना की सरणी पराए जिस जन को प्रभ दस प्यासा नानक ताकै बाल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान सासन जाका मटा अंबार आपस को जो जाड़ा नीचा सो गनिया सब ते उच्चा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कड़ कड़ चीना मन अपने ते ब्रह्म टाना उपेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन साम दृष्टि ताव नानक पाप पुन नहीं ले पाओ निर्तन को तन तेरो नाओ नेथा वेको नाओ तेरा था उन्ने माने को प्रभ तेरो मानु सगल कटा कह देव दानु करन क्रावण हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गात मित जानो आपे अपन संग आप रबराते तुमरे उस्त तुम ते होए नानक अवन जानस कोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मल क्रिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जी कड़व सहर नाम सलोक निर्गुण यार ए आने आओ सो प्रभ सदा संभाल जिन की आ तिस चीत ना रख नानक निबिहि नालु अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सास वारसी गारिया गर्भ अगन मह जिन उबारिया बार व्यवस्था तद प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साक सैन बिरद पया उपर साक सैन मुख प्याओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्शत ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारु पर सुख बसाए सुत प्रात मीत बनता संघ साए जे प्रसाद पीवै शीतल जलाओ सुखदाई पावन पावक मुलाओ जे प्रसाद भोगै सब रसाओ सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र स्नान सत्याग अवर संरचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काल लेहु प्रभ आपे आदि जो रखन हारू तिसनु पीत न करै गवारू जाकी सेवा नवरत पावै तस मूड़ा मन हिलावै जो ठाकुर सचद हजूरे ताकु अंधा जान दूरे जाकी टहल पावै दुर्गह मानू सब सारै मुकद जान सदा सदा इह भूलन हार नानक राखन हार पारू रतन त्या कौड़ी संग रचाए साच छोड़ झूठ संग मचाए जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवड़ सो दूर प्राणै छोड़ जाए तिसका श्रम कराए तिस सहा संग सहाय तिस पर हराए चंदन ले पोता रह धोए गर्द विपरीत भस्म संग होए अंधकूप मह पतत बिकराल नानक काल हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करा दिन रात बाहर भेख अंतर मन माया छपस नाही कट करा सपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग स्वान अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे त्रै थाहा जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै कहां बुझारत बूझै डोरा निस्कैया तो समझै भोरा कहां बेसन पद गावै गुंग यत्न करै तो भीसर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उह उस गर्न नहीं होत उह उस गम

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सर्व को तारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमुख सकार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसन परसो मन में प्रीत नंद दर्शो परतरा रूप न पेखा मित्रो सादगी टहल संत संहेतो करण सुन काहू की निंदा समते जाना आपस को मंदा गुर प्रसाद विखे आपर हराए मन की बास न मन ते टराए इंद्री जित पंच दोक ते रहतो नानक कोट मध्य को ऐसा अपरसो बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया हुए ते पिन कर्म करत हो वै नहीं कर्म वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछाए केवल भगत कीर्तन संग रचाए मंत्र यंत्र सिमरन गोपाल सब पर होवत कृपाल आप दृढ़ है वृह नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवत।

जिसका मन पार ब्रह्म कौन वासु उसका नाम सत रामदास आत्म राम तस्न दास दसन त्रिपाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जानु सूरदास दुर्गह प्रवान अपने दास को आप कृपा कराए तिस दास को सब सो दीप पराए सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हिता वै जीवन मुक्त सो कहा वै तैसा हर तैसा उस रोग सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मन तैसा अमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ए साई जुगत नानक ओह पुर कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर रखे तैसा त्रिनाओ आपे करण करावन जोगो प्रभ पावे सोई पुन होगो पसरे आप हुए अनंत तरंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदाउ सदाउ सदा दयालु सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक स्तुत करह अनेक जन अंत न पार वार नानक रचना प्रवृति बहु विध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भाई तीर्थवासी कई कोट बाण प्रमहदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट बिस्तर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यार

कई कोट पर द्रव को हिराई, कई कोट पर दुख न करह। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जन करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख न पजाए। कई कोट पावन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर छत्र। सगर समगरी अपना सुतारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तमस सातक, कई कोट वेद प्रण सिमरत अरसातु। कई कोट किए रत्न समुद, कई कोट नाना प्रकाश जंतु। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी में स्वर्ण थीवे। कई कोट जख किन्नर पिशाचु, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाचु। सब उत्ते नेरा सब उत्ते दूर, नानक आप लिखत रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। कई कोट जन्म

चिंत जह जह पण तह तखे नानक सब किस प्रभ कै हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यासु तिनको मिलियो प्रभ अविनाशु कई कोट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए।

के देते सदा ने आद है एको नेत्र कई कोण नाम रस पीबा है अमर भय सद सद ही जीवा है कई कोण नाम गुण गावा है आत्म रब सुख साथ समावा है अपने जन को साथ साथ

प्रभ एक है दूसर नाही कोए। नानक तिस बलिहार नाई जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण क्रामण करण जोगो जोतस पावे सोई होगो। किन मैं था बू था प्रहारा अंत नहीं किछ पारा वारा।

सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहवै जन्म रे बहुजन ब्रह्मा वै धन भूमिका जो करै गवान उस मूर्ख अज्ञान कर कर

और जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप अबरसोए जो किच की नो सो अपना रंग सब ते दूर सब का संग बूझा दिखे क्रब बेको आपे आपे अनेक मरै न बिरसै आवै न जाए नानक सदहि रहस माए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब का साथ।

तिस पुरखा करे अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाह। पिता का जन्म के जाने पुत सगल परोए अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको फरमाए। जन्म रखने में जाए उतने तिसके स्थानो जैसक नावै तैसा नानक ज्ञान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करा एक रंग नाना मिदकीनो मिस्थारो प्रभु अविनाशी एक ओंकार। नाना चलत करे खिन माहे।

आत्म काचाय प्रभापने सेव रह समाय जो हुआ होवत सो जाना प्रभापने का हुकुम पछाना तिसकी महिमा कौन बखानो तेसका गोना कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो

अगमगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किनै न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने हो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै मरसो होए उस पुरख का

जाबाकारे हो काशनां दृष्टेता पाप पुन्ना तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध कैस संग मात जब इसका वर्ण चेहन न जापता तब हरख सोग कहो किसह ब्यापता जब अपने आप पार ब्रह्मा तब मोह कहा कस होवत परमा अपन खेल आप वरतीजा नानक करना हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक है हरगमा पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकता कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरा तब कमन निडर

केको पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपदी आप कथा आप सुनना हार आप है एक आप विस्थार जात पावै ता श्रेष्ठ उपाए अपना भण लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परो।

दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जानै आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाला जीअन बहुपात जो जो रचियो सुत सत्यात जैस भावै तिस लय मिलाए भगत करह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया जन लागा हरे कनाए तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर आंदन पूजा गुर के पैर हे लोक सुखी है परलोक सोहेले नानक हर प्रभा पह मेले साध संग मिल कर हो आनंद गुण गाव हो प्रभ परमानंद राम नाम तत कर हो विचार दुर्लभ देह का कर हो दा उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुआओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिन सैंधेरा सोन उपदेश हृदय बसाव हो मन इच्छे नानक फल पाव हो हालत पालत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसा तिस साच परीखिया मान तन नाम जप हो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच वापार करहो वापारी दरगह निबह खेपत मारी काटे रख हो मन माहे नानक बहर ना वह जाए तिस ते दूर कहा को जाए उबरा राखन हार त्याए निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दूख नाम जपत मन होवत सूख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन कौ

की दृष्टा दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठा चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जैस मन बसा सो होत निहाल ताका निकट नावत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया।

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सकट माहे अनकरंग नाना दृष्टा हे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही महस का विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिस आप देखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंता।

चार कुंट दह दिसे समाहे, तिसते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरित मह देख, ससियर सूर नखियतर मह एक। बाणी प्रभ की सब को बोला, आप डोल न कबहू डोला। सर्ब कला कर खेला खेला, मोल न पाईया गुण है मोल। सर्ब ज्योत मह जा की ज्योत, तार है स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह एहो बिसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्मा, संत जना कै हृदय सब धर्मा। संत जना सुनह शुभ बचना, सर्व व्यापी राम संग रचना। जिन जाता तिस की एह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माना, करन कराम नहार प्रभ जाना। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पहावै ता करे बिस्थार, तिस पहावै ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस पहावै तिस लय मिलाए। कमन निकट कमन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जाने आप बुझाए। सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखन हारा। सगल समगरी जा का तना, अपन जा सो आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, ग्याकारी किनी माया। सब का मद लिपतो रहा, जो किश कहना सो आपे कहा। आग्या वै आग्या जाए, नानक जा पावै ता लए समाए। अस्ते होए सुनाहि बुरा, उरा कहो किने कछ करा। आप भला करतूत आत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, उत्पोत अपन संग्राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोझी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानके हो जान। जो जान तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह तनवंता कुलवंत पतिवंता, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंता। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का है सुआउ, जन का संग चित आवै नाउ। आप मुक्ता मुक्त करै संसार, नानक तिस जन का सदा नमस्कार।

छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के भर ले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद सा संग भज परमानंद।

हे रतन सुनत कमावत होत उदार अपतरा लोका है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा का मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाह दवाजा सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजा प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरदेव पूर्ण होई सेवक की सेवा आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सो होत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे अमन जान हर धन खाट चलै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद न

माता दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगता चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल

तुमरा अंत उचेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूतरता तुमते हो ए सो आज्ञा।

स्वामी सगल कठा पे अंतर जामी अपनी गत मत जानुआ पे अपन संग प्रभाते तुमरी उस तुमते होए नानक अवण जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मन हिरिया सगल उद्यम मैं उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं हर को बानी सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह कड़ वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए आने सो प्रभु सदा संभाल जिनकी आतिश चीत रख नानक निविहीन राष्ट्रपति रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कम दृष्टा ने जिन तू सास वार सी गारिया गर्भ अग्न मह जिन वारिया वार व्यवस्था तुद पया रह दूध पर जूबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कु दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बक्सले हो तो नानक सी जय जय प्रसाद धरु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जय प्रसाद पीवै सीतर जलाउ सुखदाई पावन पावक मुल्ला जय प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाप कर नेत्र रसना अगुंत सत्याग अवर संरचना ऐसे दो कमूल अन व्यापे नान काल हो प्रभ आपे आदि अन जो रख हार तिसो प्रीत न करै गवारू जा की सेवा नावनित पावै तासो मूढ़ मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा ध्यान दूरे जाकी टहल पावै दिसै दरगह मानो तिसह बसारै मुग्ध अजानो सदा सदा इह भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन ते कौड़ी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचाए जो छड़ना सो अस्त्र कर मानाए जो होवन सो दूर प्राणाए चोड़ जाए तिसका श्रम कराए संग सहाय तिस पर हराए चंदन ले पुतारे तोय गर्द प्रीत पसम संग होए अंध पू मह पतत विकराल नानक प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करा दिन रात बाहर भेख अंतर मन माया छपसना ही कच करा छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर में पैलो सवार अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे त्रै ताहा जाक अंतर बसै प्रभे आप नानक तेजन सह समात सुंदा कैसे मार्ग पावै कर गह ले ओढ़न बहवै कहां बुझारत बुझै डोराओ निस्कैया तो समझा पूरा कहां बेसन पद पावै गुंग यत्न कराए तो भीषण भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू है उस गवन करतार करना मैं दीन विनती करै नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाय सो आवै न चीतो जो बहराई तासो प्रीतो बलुआ के ग्रह पीतर बसाए अंध कर माया रंग रसाय दृढ़ कर मान मन प्रतीत चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ त्रोह अहू जुक्त बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो

हस्ति असब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या तो मोह अभिमान मिथ्या ओ पशु पर कर गमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरणों मिथ्या श्रम पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर है मिथ्या नेत्र परत्रै मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपादु मिथ्या रसना भोजन अनुस्वादु मिथ्या चरण पर विकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देहे नानक हर हर नाम लई बिरती साक्ति आरजा।

कसा दूर जनाब साहब जहाब नेरा ओ पाप से अंग सकते है तो सब कछ जाना आत्म की रहत जिस भावै तिसलै लड़ाई थान थन तरह हसवाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अरलो मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जेह प्रसाद सुबंध तन लावै तिसको सिमरत परम पावै जेह प्रसाद बसाए सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बचनाओ आठ पै सिमरो तिस रसना जे प्रसाद जानवर रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोगा

जे प्रसाद करहै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभु को सासा सतारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमरो सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पात्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुनह करुणा दो जे प्रसाद देखै बिस्मार्थ। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजी बचना। जे प्रसाद हस्त कर तरह जे प्रसाद संपूर्ण पराय। जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहज सुखावे। सब त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नारक मर जागो।

ब्रह्म ज्ञानी सगल की रिंदा आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तहवत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंता ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस कराए प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोको उर धारै जो अंतर नाम शर्म पेख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तारै अष्टपदी मिथ्या नाही दसना परसु मन मह प्रीत निरंजन दर्शो परत्र रूप न पेख नेत्र साधकी टहल संत सिंह हेतु कर न सुना काहू की निंदा

सो देश ऊपर सो परसान। बेसन की माया ते हुए पेनऊ कर्म करत हो गए निकर्म। इस बैसनु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछाए। केवल भगत कीर्तन संग रचाए मन तर अंतर सिमरन गोपाल सब पर होत कृपाल। आप दृढ़ है ब्रह नाम जी पावे नानको बैसनु परमगत पावे। भगवती भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिस्म मन सह सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पाप मन खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत भगवंत की भगवती भगवंत पंथ पद का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिन सह सगला भरम कर सगला कर पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पाप अमर खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत मान तन रपै बिस्ने प्रीत। हर के चरण हृदय मसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म में सोदै राम नाम सार रस पीवै। उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय मसावै सो पंडित फिर जोन में आवै। वेद प्राण सिमरत बुझै मूल सुख मह जानै असूल। चहु वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश। वेद

मुग्धपात्र कौतार है। सर्व रोग अयुक्त नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम काहू दुख कित न पाई धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मानो पर ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस्नदरी आया दास संतर भाई तन पाया सदा निकट निकट हर जान सोदा दुर्गा प्रवान अपनी दास को आप कृपा कराए तिस दास को सब सो जी पराए सर संगात उदास ऐसी जुगत नानक रामदास रब की आगे आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा रुख तैसा उस रोग सदानंद तैन बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी।

आप मिला मनुहार, कबू निर्क्रय प्रपात, कबू सोय रह दिनरात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की हो त्रिबाल, कबू होए बह बड राजा, कबू पेखारी नीच का साजा, कबू अपकीर्त महावै, कबू भला भला कहावै, जो प्रभु राखै तिन ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै।

सो होमत विष्टा कर जंतु आपस को कर्मंत कह वैदन मराय बहजोनु परमा वै तन भूम का जो करै गमानो सो मूर्खंद अज्ञान कर कृपा जिस कै हृदय गरीबी बसावै नानक ही है मुक्त आगे सुख पावै तनता होई कर गिरबावै तृण समान कछ संग न जावै

जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देस जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरप्रसाद नानको छूटे सहस खटे लख को उठता वै तृप्त वै माया पाचे पावे अनक भोग विखे आके कराए न तृप्ता वै खप खमरै बिना संतोख नहीं को राजा है स्वप्न मनोरथ वृत्ति सब काजा है नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त

संत के दुख न काग जो लवे, संत के दुख न सर्व जोन पाए, संत के दुख न त्रिगद जोन क्रमाए, संत के दुख न तुसना मह जलाए, संत के दुख न सब को छलाए, संत के दुख न तेज सब जाए, संत के दुख न नीच नीचाए, संदुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे।

तड़फड़ाए संत का दोखी भूखा नहीं राजा जो पाव की दन नहीं त्रापा संत का दोखी छुटा केला जो बुआड़ तेल खेत माहे दोहेला संत का दोखी धर्म तेरा है तो संत का दोखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक ज्योतिष पहावै सोई थया संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दोखी को दरगह मिला सजाए संत का दोखी सदा सहकाई है संत का दोखी न मरा ना जीवाई है संत के दोखी की पूजा ना सा संत का दोखी उठ चला।

सो जन सदा अरोग। ज्यो मंदर कौ थम थमना त्यो गुर का शब्द मन है सथमना। ज्यो पाखाण नाव चरतरा प्राणी गुर चरण लगत निस्तरा। ज्यो अंधकार दीपक परगास गुर दर्शन देख मन हुए बिगास। ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावै त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूरा। मन मूर्ख काहे बिल लाईऐ पुरब लिखे का लिखिया पाईऐ। दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिस है चितार। जो कछ करै सोई सुख मान भूला काहे फिर है जान। कौन बसताई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पसेती कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ताजा बमान ले हो मन मोल राम नाम हिरदे मह तोल। लाद खेप संता संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोय मुख उजला हर दरगह सोए। हवा पार विरला बापारा नानक ताकै सद बलिहारा। चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध कौ अपना जियो। साध के धूर करहो इसनान साध उपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाईए। अनक बिगन ते साधु राखा हर गुण गाय अमृत रस चाखा। उठ गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया। मृतक कौ जी वालनहार भूखे कौ देवता दार। सर्ब निदान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे। सब किछ तिस का ओहो करना जोगा तिस बिन दूसर हुआ न होगा। जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिस को नाम दिया